0: हेलो मगर मुनिवा ने मेरे रे है काज दिए दोने
1: जो गीजा ना इसा वो हेंदे जो गीजा ना वाचा सम गिफून जो गीजा ना मालदा मुखा गुरुद जो गीजा ना वाचा सांडो
0: वो राखो जे चाने